0: डेलिभरीको व्यवस्था छ।
1: प्रोप्राइटर गम्भीर दास नेपाल, मोबाइल नम्बर 9844-65-94-36, 9805-41-437।
0: व्यास 3 प्रशासन चोक दमौली।
2: दमौलिया FM 94.2 समुदायको आवाज।

0: दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक आवाज।
1: ओएसआर डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन।

0: World Inco festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps internet और net TV साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set top box. मात्र रूप 12 से प्रति महीना में. सर्थरू लागू होने चं. छिटो बने गई World Inc.
1: दमोली FM 94.2 समुदाय को आवाज.

एलजी ले ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ्स गुड।

0: चटपट आयो चटपट।
1: अरे यो चटपटे वाला दाई त बाहिर गएको थियो त, कहिले फर्केछ?
2: त्यही त फर्क्यो होला, छोड दे।
1: अनि अहिले चाहिँ कहाँ गइरहेछ?
3: कहाँ जानु नि, त्यही सम्झनाबाट त गयो होला। के रे
0: किन हो त्यसरी माया मारल बा।

सोच। एलजी ले ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज, अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कंप्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई, नागरिकता भए पुग्छ, हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी। एलजी लाइफ्स गुड।

एसोस एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ्स गुड।

0: World Ingo Festivity Offer. अब Pound House 1 वर्ष को 200 Mbps International Net TV. साथ में Dual Band Router, Nokia Beacon 1.1 Mesh Router और Net TV Set-Up Box. मात्र रूप 1200 प्रति महीना में. सर्थहरु लागू हुने छन्. छिटो बने गई World Link.
1: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.